दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ओह हित मट तेरुं कर ला देना हदनो, मांग हितर तेरुं कर ला देना हदनो, मगे हित मट किया ना गिहिंगे आव हमो वेन्न केला, एयाट कथा करन्न केला, एयाट आदरे केला कियन्न केला, एत मांग हितर तेरुं कर ला देना हदनो, मट एक अमारुई केला।

इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। उच्चरा क्लांगन ने पा। I am the Russian Berry Way.